बढ़ न ले ये तीखेरा दुख पर बिदे न पढ़ न ले मोमा स्वर्गे मोनु भयो म 5 वर्ष को हुदा बालखमा पढ़न पाइन 7.5 ले छुदा जय श्री पशुपतिनाथ म दुखी को गर्नु होस् सायदा।

찬 प्रभु धन्यवाद। जिंदगी मन को ती काम को बंदगी एक दुई तीन चार पाँच।